0: मुझे नहीं आता।
1: तुम्हारे गांव में कोई तो गाता होगा।
0: होली का गाना आता है।
1: चलेगा।
0: होली आई रे।
1: नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
0: दिवाली, दिवाली का गाना चलेगा।
1: चलेगा, चलेगा।
0: घर घर में दिवाली है मेरे।
1: नहीं।
0: और क्या गाऊं?
1: कोई चालू चीज गाऊं। चालू चीज, चालू चीज, चालू चीज।